काश ते डुल डुल के पै रहे है, पर अंधा इतने प्रकाश ते होंदे होया, प्रकाश तो बिना जी रहे है, परमात्मा दे होंदे होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए। समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। जेड़ी समझ जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ देश नहीं है, जो मेरे बोध देश नहीं है, वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहिंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नूं अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, जो जन्म तो अंधा है उनूं अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नूं देखण वास्ते भी ते अखां विच रोशनी चाहीदी है, अखां विच नूर चाहीदा है। बहुती दुनिया मूर्खता विच जीवदी है पर मूर्खता दिखाई नहीं देंदी, बहुती दुनिया गलतियां विच जीवदी है गलतियां महसूस नहीं होंदियां, बहुती दुनिया पाप विच जीवदी है पाप पाप नहीं दिखाई देंदा, जैसे जन्म तो जो अंधा है उनू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, पापियां नू पाप दा कोई बोध नहीं, मूर्खां नू मूर्खता दी कोई समझ नहीं। गलतियां बार बार जो हो रही ने, गलती गलती नहीं दिखाई दे रही, ए इस तरह जैसे जन्म दे अंधे नू अंधेरा नहीं दिखाई देंदा। अगर गलती महसूस होने लग पई है, भूल दिखाई देन लग पई है, मूर्खता महसूस होने लग पई है, तो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहिंदे ने हुण इस नूं मूर्ख नहीं कहना चाहिए, हुण इस नूं अंधा नहीं कहना चाहिए, क्यों इस नूं अंधेरा ते दिखाई देन लग पया, वरना अंधे नूं ते अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा। हुण इस नूं मूर्ख नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस नूं मूर्खता गलतियां भटकन पाप दिखाई देन लग पैना। पाप दिखाई दिस दिन देंदे ने पुन दी तड़प उसे दिन पैदा होंदी है, गलती दिखाई जिस दिन देंदी है सुधार दी तड़प उसे पीड़ा कल कलेश जिस दिन दिखाई देंदा है, परमात्मा दी प्यास उसे दिन पैदा होंदी है, उस तो पहला होंदी नहीं, किसी कीमत ते नहीं होंदी। इस वास्ते देखदे हां अनंत अवतारी पुरुष आए ने समझान लई सकया, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, जिन्हों अंधेरा भी ना दिखाई देंदा होवे, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने ऐसे अंधे जिन्हां नूं अंधेरा ना दिखाई दिखाई देंदी होवे, पर ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया जिन्हां नूं अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, अपने कीते हुए गुनाह नहीं दिखाई देंदे, भुल्लां नहीं दिखाई देंदियां, सवेरे तो शाम तक भुल्लां विच जीवना, रात दी आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां विच जीवना, सवेरे उठदियां सार जागना, गलतियां विच जागना गलतियां विच जीवना, और रात नूं सौण लग्यां इंज कह लो भुल्लां विच सौणा, नींद भी भुल विच जागृति भी भुल विच, ऐसे मनुख दा सौणा ते जागना व्यर्थ भटकना, ऐसे मनुख दी नींद विच सुपने भी ऐसे भयंकर आवणगे कि इह सुत्ता होया भी तड़पदा रहेगा, बेचैन ते व्याकुल रहेगा जैसे कि दिन दे समय। शिख सादी साहब कहा करदे सन

0: मूर्ख मनुख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। क्यों? बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी। और ते कुछ प्रगट करन दा वसीला है नहीं, देखदे आ मूर्खता प्रगट नहीं होंदी। सुन की रहे है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, चल केड़े पासे रहे है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी। मूर्खता प्रगट होंदी है बोल के। मूर्ख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना, पर जे किधर के चुप रहना मेरा गुण है, समझ लो मूर्खता उसकी समाप्त हो गई, मूर्खता उसकी खत्म हो गई, उन्हों को झलक मिल गई। सतसंग दा यही लाभ है, सतपुरशां दी सोबत दा यही पाठ पठन दा यही लाभ है। किसी दिन मनुख नूं अपनी मूर्खता दिखाई दे जाए, ई जिहड़ी आम कथा कहानियां च सत्संग विच गल कीती जा रही है, परमात्मा दिखाई दे जाए, परमात्मा दिखाई दे जाए। नहीं, ते नंबर दो ते नंबर तीन ते गल है, पहली गल ते यह है अंधेरा दिखाई दे जाए, मूर्खता दिखाई दे जाए। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, पर जिसनू अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा उन्हू प्रकाश कित्थे दिखाई दे रहा। दूसरा, अंधेरे विच चलना चलना नहीं होंदा, भटकना होंदा। रस्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा, कना भटकना। ना मंजिल दिखाई देंदी है, ना रस्ता दिखाई दे रहा। सारी जिंदगी मनुख दी कृत विच बतीत होंदी है, ना कृत दिखाई देंदी है, ना कृत दा अंजाम दिखाई देंदा, ना कर्म दिखाई देंदा, ना कर्म दी आखिरत दिखाई देंदी है। तो इनू करना कहोगे? नहीं, ये तो भटकना है। इनू चलना आखोगे? ये तो भटकना है। हजार अंधे दूसरी समत विच आ रहे हैं, टकरा ही जाणगे। जगत टकराव है, कौमां टकरा रही हैं, देश टकरा रहे हैं, परिवार टकरा रहे ने, व्यक्ति टकरा रहे ने, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। भगत शर्मा ने मन रहे संसार अंध गएरा, समस्त संसार अंधेरे दिच जी रहे, अंधकार दिच जी रहे, मूर्खता दिच जी रहे, अचेतपणे दिच जी रहे। इस वास्ते इसका सारे का सारा करना गलत है। अंधे का चलना भटकना है, मूर्ख का पूजा पाठ भी व्यर्थ है, मूर्खता दिच कीता होया दान वह भी व्यर्थ है। मूर्ख दे हर कर्म दिच हंकार दी बू आवेगी, निरंकार दी सुगंध नहीं। मूर्ख दी हर कृत दिच बिल्कुल बदबो ही होवेगी, वासना दी प्रार्थना दी सुगंध नहीं होवेगी, प्रार्थना दी महक नहीं होवेगी। इस वास्ते मेरे देखे उन्ना देचों एक ही सुरमोर पुन है, सुचेत हो जाना, सावधान हो जाना, समझ आ जानी। एक कोई गुनाह है जो सारे गुनाहां दी जन नहीं है, एक कोई पाप है जो सारे पापां दा पितामा है, वो है अज्ञान, वो है मूढ़ता। बस इसे तो सारे गुनाह जन्म लेंदे ने, इसे तो जो है सारे पाप जन्म लेंदे ने। और ये कहण विच कोई संकोच नहीं, जो मेरी समझ विच नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे नानके दादके सौरे पशुआं दे भी हैगे ने, नानी उन्हां दी भी है, सस दी उन्हां दी भी है, भैण भरा उन्हां दे भी हैं, चाचे ताए मामे मामियां मासियां उन्हां दी भी हैगियां ने। समझ नहीं है, समझ नहीं है। चूंकि समझ नहीं है तो पशुआं दी दुनिया विच परिवार नहीं है, नहीं है। अगर समझ नहीं है तो फिर मनुखां दी दुनिया विच निरंकार नहीं है, नहीं है। परिवार दे होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, निरंकार दे होंदे आया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, ईश्वर तो बिना जींदा है, जी रहा है ईश्वर तो बिना जी रहा है पशु, जैसे बहन बिरा दे संबंधा तो बिना जी रहा है, मामे चाचे ताए ताइया दे संबंध तो बिना जी रहा है, नानके दादके सौरे होंदे होया भी उना दे बोध तो बिना जी रहा है, परमात्मा दे होंदे होया मनुख परमात्मा दे बोध तो बिना जी रहा है। शायद इस वास्ते ही गुरु नानक ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विबोध लगाओ। अंधे चान रखिए दीवे बले पचास, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पंजा जल दे चिराग सामने ने, अगर मनुख अंधा है तो पंजा दीवे व्यर्थ हो गए, पता नहीं मनुखता दे सामने कितने अवतार व्यर्थ हो गए ने, कितने जलदे हुए दीवे व्यर्थ हो गए ने, जलदे रहे वंडदे रहे रोशनी, और जिंदगी दे दीवे रिच वो अपना खून जलांदे रहे, अपना समा जलांदे रहे, अपनी शक्ति जलांदे रहे, और उस तो जो रोशनी पैदा होंदी रही कोशिश से उन्हें जगत नु मिले, पर गुरु नानक कहंदे ने अंधे चानन रखिए दीवे बले पचास, जलदे पंजा दीवे व्यर्थ ने अंधे दे सामने, पता नहीं मरण नु नाकारा कर चुकी है, बिल्कुल नाकारा कर चुकी है। कहंदे ने जिस क्लास विच जिस स्कूल दी क्लास विच बच्चे बहुत फेल हो जान रह जान पास ना हो सकन, स्कूल दे मुंतजिम सोचदे ने टीचर बदलिए उस्ताद बदलिए अध्यापक बदलिए, इतने बच्चे फेल हो जांदे ने, शायद ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा, ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़दा ही नहीं तो फिर की होवेगा, फिर की होवेगा। प्रकृति अध्यापक बदल दी रही और इक्को ही श्रेणी दे सनातन मत दे 24 अवतार आए, गुरु नानक ने 10 रूप धारण किए, धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी दे रूप च, गुरु अमरदास जी दे रूप च, फिर गुरु रामदास जी दे रूप च, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप च, फिर छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे रूप च, फिर शमा जली गुरु, फिर बालक गुरु धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दीपक लेके अगे आए, फिर सच दी मशाल लेके अगे आए गुरु तेग बहादुर साहब जी, फिर रोशन जमीर बनके रोशन चिराग बनके महा सूरज बनके प्रगट होए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, जरदरस्त आए ईसा आए मुहम्मद आए मूसा आए, ये कहने दे कोई संकोच नहीं, अरब सारा अज भी अंधेरे च है, मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे च है, अवतारा दी धरती कैलाण वाली ए हिंदुस्तान ए भारत अगले लाउत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने, समस्त चीन अज भी अंधेरे च है, अज भी अंधेरे च है, सूफिया नु जन्म देन वाली ईरान दी धरती शेख सादी हाफिज मौलाना रूम शमस तवरेज, और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती देच, ईरान अज भी प्रबल अंधकार देच है भटक रहे, हजारा चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने अंधे ने अंधे ने। ये अंधा पन केड़ी गल दा है, क्या प्रकृति अंधियां नूं जन्म देंदी है? नहीं, किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा असी देख सकते हैं जो जन्म तो अंधा है। प्रकृति ते सुजाखियां नूं पैदा कर दी है। प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकते, परमात्मा ते ज्ञानियां नूं पैदा करता है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया, थोड़ी देर बाद उठता है और गऊ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनों ज्ञान किसने दे देता, तेरी खुराक इना अस्तना देच है, तेरा रिजक अस्तना देच पे है, ते फिर इसनों चूंगण दा बोध किसने दे देता। इते सब प्रकृति दे रही है। रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है, राजक रहीम दी तलाश दा बोध भी राजक रहीम दे रहे है, परमात्मा दे रहा है। सबनों ज्ञान दे रहे है, सबनों सोच दे रहे है। पर ये अंधापन क्यों है? एक ते वो अंधा है जिसनों कह दईए जिदी अखां विच रोशनी है ही नहीं, एक वो अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं, खोलदे ही नहीं, और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठदे ने, ताब गवा बैठदे ने, और फिर जीवन इस तरह जीवदे ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू। सूरज चढ़िया होया है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नूं की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है। कैसा ते नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या है तो कहण विच कोई संकोच नहीं, उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, अंधेरे विच जी रहा है। बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है, क्योंकि अंधकार विच जी रही है ते इनू उल्लू कहण विच की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत, माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी विच उल्लू नूं गुगू कहिंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक। संपत दौल झूल संग झूलत, माया मगन फिरत गोगना। कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसदी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसदी चाल बन जाए, टकराव ही जिसका जीवन का आधार बन जाए, ते कल कलेश जिदी जिंदगी का लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नूं हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पे ने, औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके, अपने हिरदे विच तरह तरह की औषधि रख के, जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके नौ खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पे ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: गुरबाणी शब्द कथा कीर्तन सुन वास्ते सुनदे रहो रेडियो 1550 AM। संत मस्कीन जी, भाई पिंदरपाल जी, भाई ठाकुर सिंह अते कई होर ज्ञानी ते महाकवियां दियां कथावां सुनन वास्ते ट्यून इन करो 1550 AM रेडियो स्टेशन।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

वचन है लंगर चले गुरु शब्द हर तोट ना आवी खटिए खर्चे दित कसम दी दर ते बाबे नानक दी रब दी दिते हुए खर्चे नु गुरु नानक साहब दी जोत गुरु अंगद साहब वंडन लगे ने खर्चे दित कसम दी आप खैदी खैर दबटिए हुण देखो शब्द ने खर्चे खर्चन वास्ते दिता बाबे नानक ने खजाना नाल कह दिता आप खैदी आप खाया जे खैर खैर दर ते जेड़े मंगण आउणगे उन्हां दी झोली विच पाया जे। हजूर ने कहा कि लंगर चला गुरु शब्द हर तोट ना आवी खटिए खर्चे दित कसम दी आप खैदी खैर दबटिए इत्थे एक बचन कीता कहन लगे मेरे दाता जी कि आप जी उते एनी कृपा भी हुंदी होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए नूर दी वरखा हो रही है गुरु अंगद साहब उस बरखा नू लोकां तक पहुंचा रहे ने क्योंकि गुरु नानक साहब ने उन्हूं अपना अंग बनाया है। खोवे सिवत किसम दी नूर अरसों कुरसों चट गए तो दिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एक बचन आप रोज होर पढ़ दियो बरे हैं दरगह गुरु की कुदरती नूर हुण बरे है बरे है नहीं बरे है बरे दर से बर रहा है वरख रहा है की वरखदा है कुदरती नूर परमात्मा दे घर विचो रूखानियत दे बदल बन के गुरु अंगद साहब उन्हां दी बरसात पै करांदे ने ते जेड़ा आउंदा उन्हूं नाम नल पे देंदे तांते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई ते गुरु नानक साहब ने की कीता इनू भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच कहा कह लगे प्यारियो के गुरु नानक साहब ने मेहर कीती पारस होवा पारसों गुरपदेश गुरपरचे गुरपदेश विच रहना है चंदन होवा चंदनो है दीपक ते दीपक प्रगाश्या है। हुण धन गुरु अंगद साहब शब्द सुर दी खेड नहीं मरतांदे कैसी वरखा पै करदे ने भाई पारो वर्गा आउंदा है ते ओ जदों आके पुछदा महाराज हंस और परम हंस की है ते बाबा नानक जी दी जोत गुरु अंगद साहब वरखा करके कहिंदे ने कि पारो ते भाई पारो जुलका सी पारो हंस हुंदे ने जिहड़े दुध पानी नखेड़दे ने ते परम हंस हुंदे ने जिउंदे जिउंदे जी अपने शरीर विचों बदे हो जांदे ने ते तुर पिया कहिंदा फिर परम हंस सी ते नहीं बनना। बाबा जी ने कृपा की गुरु अंगद साहब की नदर नाल गुरु अमर सादास दे वेले परमहंस बनिया ते भाई गुरदास ने अपनी रचना विच क्या कहन लगे पारो जुलका परमहंस पूरे सतगुर कृपा धारी पूरे गुरु ने मेहर की। एक प्रमाण मैं होर दे के अगे चलना कि गुरु ने मैले हिरदिया विच नाम की वरखा कर दिती गुरु अंगद साहब ने। हुण भाई जोत रसोईया है ते भाई गुरदास ने बचन भी कहे कि जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर तारी पूरे सतगुर पै सवारी। जोध रसोईया देवता ए असल सी ब्राह्मण इस भाई जोध ने इनी लंगर भी सेवा की कि माता खीवी जी नाल दो सिख होर सन जेड़े सेवा करते सन एक भाई केदारू केदारा ते दूजा भाई साहब भाई जोध। ए जोध ब्राह्मण सी ए जोध खैरा जट नहीं क्योंकि दो जोध सन एक बाबे नानक दा सिख सी जिदे तो पौड़ी सुन के बाबा लैणा जी करतारपुर गए ओ खैरा सी खडूर साहब दा रहण वाला ए भाई जोध ब्राह्मण सी ए बाहरों आया सी। मेरे गुरु अंगद साहब किवें वरखा करदे ने नाम दी भाई जोध आया इन्हें बाणी सुनी कीर्तन सुनिया मन चाया भी लंगर च सेवा करा सादे कपड़े पा के माता खीवी नाल सारा दिन भाई जोध ते भाई केदारा लंगर विच रहिंदे सन ते भाई जोध ते मन विच कदी आ जाना ते नीवियां जातां वाले भी इत्थे आए क्योंकि ब्राह्मण सी कई जन्मां दा उहदे अंदर ए सी खून ए सी कि मैं उच्ची कुल दा वां मन च आया फिर एक दिन आया मना जे भांडे मांझ के भी जे इत्थे लंगर विच खौंचे मार के भी लकड़ा पाड़ के सारा दिन धुप्पे चुल्हे सामने बह के भी तेरी मैल ना गई ते मैल जाएगी कितों कहन लगा अजे भी खौमे

अपना मोल बचा। कहो कबीर ए राम की अंश, रोटी मन दी लोड़ नहीं है, भोजन जीव आत्मा दी लोड़ नहीं है। ये भी मैं अर्ज करता हूं, पर साड़ा जीवन जीवन चेतना तन नाल इतनी सम्मिलित हो गई है, इन्हें भी जीवन दा आधार रोटी मन लिया, भोजन मन लिया नहीं। तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। दूसरा, जमदिया ही मनुखी बच्चे दिया नजरां जो लभदिया ने, यकीन जानो रिजक ही लभदिया, कुछ भी नहीं लभदी, रिजक लभदी। अस्तन मूह दे च पै जांदा, खुश हो जांदा, प्रसन्न हो जांदा, रिजक मिल गया। अजे उसके हाथ रिजक कमा नहीं सकते, अजे उसके पैर रिजक तक पहुंच नहीं सकते। तो कुदरत ने नियम बनाया, अजे उसनों रिजक मिलता है मां के हाथों तो, अजे उसनों रोजे मिलती है मां तो। सहजे सहजे हाथ पैर काम करनगे, रिजक लभना पेगा, लभना पेगा। और रिजक हर जगह नहीं पिया, जिथे है उथे रिजक खिंच के लै जाएगा। जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। मन ने तन दी संगत कर ली है तो मन भी समझदा है मेरी भी लोड़ रोटी है, कतई नहीं, कतई नहीं। पेट भर जाता है, मन ते भरदा ही नहीं, तन ते त्रिपत हो जाता है। खांदे दो रोटियां नहीं, चार खा लेंगे, छह ख्याल त्रिपत हो गया, मन ते त्रिपत होंदा। सुनदे होवे कोई कईयां कोल, और कईयां ने मैनू कहा ज्ञानी जी की करिए, पेट ते भर गया, मन नहीं भरिया, स्वाद है रस है। हुण तन दी लोड़ ते है ने, भुख ते है ने। तन दी लोड़ नूं मन ने अपनी लोड़ बना लिया है तो फिर की आउंदा, खाई जांदा, खाई जांदा। मन दी भुख ते मिटदी नहीं, नहीं मिटदी। बहुत सारे मुल्कां दा अज मसला हो गया ओवर ईटिंग, जरूरत तो ज्यादा खाना मसला खड़ा हो गया। और साडे देश दे आयुर्वेद आचार्य इंज कहा करदे सन, आहार रोग आहार चिकित्सा। खाना पीना रोग है, खाना पीना अमृत है, खाना पीना जहर है, खाना पीना दारू है। क्यों ऐसा क्यों कह देता है? भूख है, खाना पीना अमृत है। एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी। भूख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं 90% आहार रोग, खाने पीने तो रोग पैदा होंगे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान किया, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे? निकम्मे चकरां च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं। दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई, गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिरे।

बाबा होर खाना खुशी खुआ, भुखते है नहीं, खा रहे है एक एक बुरकी रोग होवे, एक एक बुरकी जहर बनेंगे, एक बुरकी शरीर देच अनर्थ पैदा करेंगे। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा, मन नु विकारी बनाएगा, शक्ति अदक बनेगी, उदी लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। पर भुलेखे करके तन दिया लोड़ा नु मन ने अपनी लोड़ समझ ले, तो उदे नाल की आउंदा है? तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं, भुखी नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा में था, कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवे इकट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोहे इकट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आता, लोभ करके आता। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनिया लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत शांत नहीं होता, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह दई है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी का दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नो जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया, फिर तू किस तो बनया है? कहो कबीर ए राम की अंश, तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। एक कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकदा है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा, इस चक्कर च ना पैणा। इह मन वास्ते है, ये मन वास्ते। भोजन मेरे सामने पे है, पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मुंह च ना पावा, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़ता, यकीन जानो बाणी पढ़द्या या भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़ता रहे बाने। कहिंदे ने, मैनू मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं तेरा चेहरा